0: अलैकुम सामी, हम सदाए तुर्की से मुखातिब हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 7 सितंबर बरोज सोमवार है। इस वक्त अंकरा के मुकामी वक्त के मुताबिक सपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं।
1: सामना भाई नशियात को शॉर्टवेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज़ के अलावा तुरसा 3 ईस्ट 4 वेस्ट में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।
0: और आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें और सिलसिलावार प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानी और अनातोलिया की इब्तदाई तहसीब पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम हसब मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपकी मेज़बान है मिसबा शाही
1: और इमरान ओपर,
0: और स्टूडियो में हमारे साथ तकनीकी तआवुन कर रही हैं आरजू उस्ता।

0: सबा गजा शहर के मगरब में वाक़ अल नसर मोहल्ले में एक कार को ड्रोन से निशाना बनाए जाने के नतीजे में रास्ते पर मौजूद यूसुफ अकेला और इनकी बेटी वफा हलाक हो गए हैं। अलशाती पनागजीन कैंप में भी शहरियों के इज्तम पर एक और ड्रोन हमले में 4 फलस्तीनी दरमियाने और शदीद दर्जे के जख्मी हुए हैं। गजा में फलस्तीन वजारत सेहत के ताज़ा बयान में कहा गया है कि इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में कत्ल किए गए अफराद की तादाद 1344 तक और जख्मियों की तादाद 4481 तक पहुंच गई है।
1: कातिल इसराइली फौज लुबनान पर अपने हमले जारी रखे हुए। इसराइली फौज ने जुमी लुबनान के कस्बे कैफर रोमान पर रात के शदीद फजाई हमले किए। लुबनानी सरकारी खबर एजेंसी NNA के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने 3 मंजिला शहरी इमारत पर बराह रास्त बमबारी की, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 9 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। इलाके में तबाहकारियां इस हद तक महदूद नहीं। कैफर रोमान में एक शहरी गाड़ी को ड्रोन की तरफ से निशाना बनाए जाने से 2 तिब्बी कारकुनान जान बहक हो गए, जिससे शहर में मजबूरी जानी नुकसान 11 तक पहुंच गया। इसराइल फजाई ने मुबैना तौर पर बलाई नबतिया अरब सलीम कस्बों पर भी बमबारी की। जनबंदी के मुहाते के बावजूद इसराइल ने जनूबी लिबनान में अपना कब्जा फजाई हमले जारी रखे हुए हैं, जिसमें मुतद कीमती जाने जाया हो चुकी हैं। लुबनानी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि 2 मार्च से अब तक होने वाले हमलों में हलाक शुदगान की तादाद 4362 जबकि जख्मियों की तादाद 12378 तक पहुंच चुकी है।
0: यमन मुसल्ला फौज ने हूसियों के खिलाफ 13 फजाई हमले किए हैं। फौज के जारी करदा बयान के मुताबिक जंगी तैयारों ने पीर की सुबह वस्ती यमन में हूसियों के ठिकानों पर 13 फजाई हमले किए हैं। हमलों में अलबेजा सूबे के मुख्तलिफ इस्लाम में मिसाइल लांचरों समेत हूसियों के ठिकानों, इज्तमा के मकाम और फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। सूबा अलदाले के जनूब में एक और कार्रवाई के दौरान हूसियों के एक कमांड एंड कंट्रोल मरकज और थर्मल निगरानी के निजाम को भी तबाह करने का दावा किया गया है। यमनी फौज के मुताबिक जुलाई से बाहमी हमलों में इजाफे के बाद मुल्क के कई महाजों पर दोबारा झड़पें शुरू हो गई हैं। हालिया कशीदगी ने अप्रैल 2022 में अक्वाम मुत्तहदा की ज़ेरे सालसी होने वाली जंगबंदी के बाद के निस्बतन पुरसकून माहौल को मुतासिर किया है। माहिरीन के मुताबिक हालिया फजाई हमले और झड़पें यमन में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों की नज़ाकत को जाहिर करती हैं।
1: सदर यूक्रेन वलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है रूस के साथ जंग मुमकिन तौर पर मौसम सरमा में भी जारी रहेगी। ज़ेलेंस्की ने कीव में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की, ये बताते हुए कि मुज़ाकराती अमल मुअस्सर तरीके से दोबारा शुरू हो गया। ज़ेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया, सबसे नाजुक हल तलब मसला जमीन का मामला है। यूक्रेन के रहनुमा ने कहा मौजूदा हालात से ये तो नहीं की जा सकती कि जंग मौसम सरमा से पहले खत्म हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा जंग मौसम सरमा में भी जारी रहेगी। खुसूसी नुमाइंदों विटकॉफ और कुश्नर ने मास्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने राब्तों के बाद कीव में अपनी मुलाकातों पर इत्मीनान का इजहार किया। अमरीकी वफद ने ऐलान किया इनका मकसद अमरीका यूक्रेन रूस के दरमियान सैफ अफ्रीकी मुजाकराती फॉर्मेट को लौटना और एक देर पा अमन पैकेज को तश्कील देना है।
0: अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान ने 5 रोज़ा मुश्तरका फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। यूनहाप न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान ने पीर के रोज़ 5 रोज़ा मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज़ कर दिया है। मशकों का मकसद मुख्तलिफ शोबों में ऑपरेशनल सलाहियतों और मुश्तरका रद्दअमल की सलाहियत को तकवीत देना है। एजेंसी ने जनूबी कोरिया मुसल्ला अफवाज के सरबराह के हवाले से बताया है कि फ्रीडम एज नामी ये मशकें जनूबी कोरिया के जजीरे चीजो के मशरक और जनूब में बैन अल-अक़वामी पानियों में शुरू की गई हैं। मशकें ऐसे वक्त में शुरू हुई हैं जब अमरीका की ट्रंप इंतजामिया ने शुमाली कोरिया को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की तरगीब देने के लिए गुज़श्ता माह जनूबी कोरिया के साथ होने वाली 2 तरफ़ा उल्ची फ्रीडम शील्ड मशकों का दौरानिया कम कर दिया था। जनूबी कोरिया मुसल्ला अफवाज के सरबराह ने कहा है कि तीनों ममालिक मजबूत और मुस्तहकम तआवुन के ताल्लुकात बरकरार रखते हुए इन मशकों के जरिए बहरी, फजाई और साइबर शोबों समेत मुख्तलिफ मैदानों में अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों और मुश्तरका रद्दअमल की इस्तेदाद को बेहतर बनाएंगे।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: शुमाली कोरिया ने कहा है कि हम अपने फौजी हथियार पर तोसी करके जौहरी हथियारों से लैस बहरी बेड़ा तैयार करेंगे। अमरीकी तहत मुल्क की बहरी मशकों के आगाज के दौरान शुमाली कोरिया के सरकारी ज़राए अबलाग ने इत्तला दी है कि मुल्क रहनुमा किम जोंग उन ने शुमाली कोरिया की बहरिया को जौहरी हथियारों से लैस बहरी ताकत में तब्दील करने के अज़्म का इजहार किया। जापान, जनूबी कोरिया, अमरीका की शिरकत से हफ्ते शुरू होने वाली बहरी मशकों का आगाज 2023 में किया गया था।

ये एक ऐसा महफूज और मुकफ्फल तिजारती मरकज था जहां कीमती तरीन अशिया मसलन जेवरात रेशम और हथियार फरोख्त और महफूज किए जाते थे। नंबर दो, रुस्तम पाशा कारवान सराय एदिरने। ये इमारत कानूनी सुल्तान सुलेमान के दामाद और वजीर आजम रुस्तम पाशा ने मामार सिनान से तामीर करवाई थी। अदिरना की यूरोपी तजारत में अहम तस्वीराती हैसियत को मजीद मुस्तहकम करने वाली ये दो मंजिला बरामदादार सहन वाली इमारत एक होटल भी थी और एक अजीम तजारती मरकज भी। यहाँ मौजूद दुकानों से हासिल होने वाली आमदनी रुस्तम पाशा वक्फ के लिए मुख्तस की गई थी। नंबर तीन, तारीखी कमर आल्त बाजार और खसलार आगास हान इसमीर। 1744 में हाजी बशीर आगा ने खसलार आगास हान तामीर करवाया। हाजी बशीर आगा उस्मानी दरबार में एक इंतहाई बासर वक्फ मुंतजिम थे। ये हान इसमीर की बंदरगाह के गिर्द कायम तजारती नेटवर्क में रिहाइश और तजारत के अहम मराकज में से एक था। ये हान इस बात की मिसाल है कि इसमीर के बरामदी दरवाजे के जरिए वक्फ का निज़ाम समुंदरी तजारत के साथ किस तरह भरपूर था। हान से हासिल होने वाली आमदनी इस्तंबुल में फलाही कामों और मुकद्दस सरजमीन में हरमैन शरीफैन के लिए भेजे जाने वाली इमदाद के लिए वक्फ की गई थी। नंबर चार, बाकरचिलर बाजार और गुमरुख खान शानलो उर्फा। शानलो उर्फा अनातोलिया के तजारती रास्तों का एक अहम मरकज था। कानूनी सुल्तान सुलेमान के दौर में बहराम पाशा के हुक्म पर तामीर किया जाने वाला गुमरुख खान अपने वक्फ नामों के मुताबिक वहां से गुजरने वाली आबी नहरों के जरिए ठंडक फराहम करता था और इसका मकसद तजारत के लिए पुरसकून माहौल फराहम करना था। उर्फा के मशहूर बाजार जिनमें तांबे के बर्तनों का बाजार, बाकरचिलार और सुनारों का बाजार भी शामिल हैं, इनसे वाबस्ता मसाजिद के औकाफ के जरिए

कुछ लोगों के लिए मुस्तकबिल के बारे में सुनना एक नागुजीर जज्बा है। अफ्रीका के कदीम कबाइल से लेकर आज के जदीद इंसानों तक बहुत से लोग मुस्तकबिल के बारे में मुतजस्स हैं और उस पर वक्त और पैसा खर्च करते हैं। मज़ीद ये कि यह जदीद दौर का तजस्स नहीं है। नामालूम के बारे में जानने और शायद तकदीर को बदलने के लिए मुस्तकबिल को देखना हमेशा एक तजस्स रहा है जो ज़मानों से ताज़ा रहा। कदीम चीन से लेकर मेसोपोटामिया तक, कदीम मिस्र से लेकर रूमी सल्तनत तक हज़ारों जहानों के मराकज़ बनाए गए हैं और पूरे दुनिया में किस्मत कहने के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए गए हैं। आज हम दीदिम के अपोलो मंदिर के बारे में बात करेंगे जो कदीम ज़माने में अनातोलिया में पेशेंगोई के सबसे अहम मराकज़ में से एक था। कदीम ज़माने के बेहतरीन महफूज मंदिरों में शुमार किया जाता है अपोलो का मंदिर। कदीम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेशेंगोई का भी ये मरकज़ रहा। यह मंदिर आए दिन के दीदम कस्बे में वाक़ है। अपोलो का मंदिर मेरिट का मुकद्दस मकाम भी है जो इयोनिया का ताकतवर सदर मकाम था और अहम इनियोनियन शहर जैसे एफेसिस और प्रेन के लिए भी हिकमत का मरकज़ रहा। इसकी तामीर में सैकड़ों साल लगते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। मंदिर इतना बड़ा है कि कदीम ज़माने के मशहूर जुग्राफियादान स्ट्राबोन लिखते हैं कि इसकी जिसामत की वजह से इसका अहाता नहीं किया जा सकता। जंगों और राग के नतीजे में तबाह होने वाले मंदिर को सिकंदर आजम बाद में रूमी शहनशाहों ने दोबारा तामीर किया था। यूनानी अफसानों का मारूफ देवता अपोलो आर्ट, मौसीकी और इल्हाम का देवता है। वो मुस्तकबिल को पढ़ने की सलाहियत भी रखता है। अफसाने के मुताबिक अपोलो एक दिन चरवाहे ब्रांखोस से मिलता है और उसे जादू के राज सिखाता है। चरवाहा इस इलाही सलाहियत का बदला देने के लिए अपोलो का पहला मंदिर कायम करता है। चरवाहे ब्रांखोस की औलाद एक तवील अरसे तक अपोलो के मंदिर में पादरी और मुंतजिम रहे थे। कदीम दुनिया का ये हिकमत का मरकज़ वक्त के साथ इतना अहम हो गया था कि बादशाह दूसरी रियासतों के खिलाफ ऐलान जंग करने से पहले और ताजरों के सफ़र से पहले ही मुस्तकबिल के बारे में जानने की कोशिश करने के लिए मंदिर में आते थे। अपोलो से पूछे बगैर कोई भी अहम फैसला करने का नहीं सोचता था। खुदाई के दौरान मिलने वाली पेशेंगोई के मतन के मुताबिक जो लोग ये जानना चाहते थे कि मुस्तकबिल में क्या होगा, पहले एक मखसूस फीस अदा करते थे और जिनकी माली हालत अच्छी थी वो मंदिर के लिए कुर्बानी भी पेश किया करते थे। पेशेंगोई करने से पहले पादरियों ने 3 दिन तक का रोज़ा रखा, अपने आप को मुकद्दस पानी से धोया और उसी तरह कुर्बानी तैयार की। वो शख्स उस सवाल को पहुंचाएगा जिसका जवाब देवता अपोलो ने उसे कागज़ के टुकड़े पर लिख कर दिया था। और एकल मुकद्दस पानी मंदिर के सबसे अहम अंसर को देखकर मुस्तकबिल को देखेगा और मुनासिब वक्त के अख्तिताम पर जवाब देगा। ताहम ज़राए में कहा गया है कि ये एक धोखा है क्योंकि ऑरेकल्स कभी भी कतई फैसले नहीं बताते और जो कुछ कहा जाता है उसके मुख्तलिफ माने लिए जा सकते हैं। लोग अब भी ऑरेकल्स पर भरोसा करते रहते हैं, मंदिर का दौरा करते हैं और मुस्तकबिल के बारे में सुनते हैं, यहाँ तक कि ईसाइत फैल गई और किस्मत कहने, जादू टोने और पेशेंगोइयाँ गैर कानूनी करार दी गईं। अपोलो का मंदिर एक इंतहाई मुतासिरकुन पनागाह है जिसमें उसके शानदार कॉलम मौजूद हैं जो आज तक जिंदा हैं। अपने वक्त का सबसे बड़ा संगे मरमर का एक टुकड़ा और इसका मुनफरद मंसूबा। बाज़ माहिरीन का कहना है कि अगर इसे मुकम्मल कर लिया गया तो यह कदीम दुनिया के 7 अजूबों में से एक होगा। सैकड़ों सालों के बाद भी यह अपने साइज, दस्तकारी, तकनीकी इख्तराआत और मवाद के मयार से मुतासिर करता है। अपोलो का मंदिर सैकड़ों सालों से दाखिल दरवाजे पर मेदोसा के सर के साथ जायरीन का इस्तकबाल कर रहा है। यूनानी असातीर के मुताबिक मेदोसा अंडरवर्ल्ड के 3 बहन भाइयों में से एक था। ख्याल किया जाता है कि सांप के बालों वाला ये दरिंदा अपनी नज़रों से हर चीज़ को पत्थर बना देता था। इस वजह से